0: हेलो,
1: अँ भन त। हाँ
0: कहाँ छौ? आज भेट्ने भने होइन?
2: किन भेट्ने? म आज बिजी छु।
0: तिमी मलाई माया त गर्दैनौ?
1: हे जहिले मन मुटु माया के हो के फोन राख।

किट्स शेली र लक्ष्मीप्रसादका कविता सम्झेर पढ्ने कोसिस गर्यो। एक दुई लाइन र विवाहलाई कुनै राम्रो गजल गाऊ, कुनै गीत नै सही भनेर कर गर्यो। विवाहले पनि सागर निजामीको मेदी हसनले गाएको एउटा गजललाई गाई, ढुँढ्नेको तुझे ओ मेरे नमिल्ने वाले, ओ चलाहे जिसे अपना भी पता याद नहीं, हुस्ने चूक हुई इसकी है तारीफ गवाह, इश्क से भूल हुई तो ये मुझे याद नहीं, कुछ तो लतीफ होती घड़ियां मुसीबतों की, तुम एक दिन तो मिलते दो दिन की जिंदगी में। अजीत जहां को बेगम अख्तर ले गाएको अर्को गजल लगाई, फूलों के कटोरों से छलकी पड़ती है सबनम, हंसने को तेरे पीछे भी सवार हंसी हूं, तुम पास नहीं हो तो अजब हाल है दिल का, यूं जैसे मैं कुछ रख के कहीं भूल गई।

ओ ओल्ड, ओ लाइक, ओ टाइम, अन हेल लास्ट स्टेप्स क्लाइम्ब, ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड फॉर, व्हेन विल रिटर्न ही ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, नो मोर ओ नेवर मोर, आउट ऑफ द डे एंड नाइट, अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर, मूव माई फैंक, आई रेंट विथ ग्रीफ बट विथ डिलाइट, नो मोर ओ नेवर मोर।